0: एक से आठमा मन परे की राधा हे हरि का दाम को डाली मा
1: रेडियो धादिंग 106 MHz
2: ये कुमार जी हजुर का मुखार बिंदु बाट धेरै कुरा सुन्ने अवसर पाए प्रभु तीस पछि का कुरा के भए संहार करता श्री महादेव को हालत कस्तो भयो सती देवी ले कसका गर्भमा वास ले श्री महादेव र पार्वती को विवाह कसरी भयो आदि कुरा जान्न निकै उत्सुक छु प्रभु आज्ञा हो

0: होइन ढुक्क हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स के अभिकर्ता बनौ
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड
2: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज

0: Sonia. Extreme energy drink.
1: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: रेडियो धारी समय संकेत
1: अहिले बिहानको 9 बज्यो।
2: शिवम सीमेंट क्वालिटी को मामला में नो कम्प्रोमाइज भन्दै शिर ठाडो पारिरहेका छौं सदा सर्वदा।

रेडी बताऊँ 100 मेगाहर्ज का साथ ही इंटरनेट ऑनलाइन को www.radiodahalingorg मार्फत संसार भर के साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 9 बजे को खबर में म वेक को नमस्कार खबर को सुरमा मुख्य मुख्य

0: रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड वित्तीय सेवा को अर्को परिभाषा।
1: आज भोलि त सबैले हाइब्रिड जातको

रेडियो एक सौ समय बहस का साथ हुई इंटरनेट ऑनलाइन को www.redbaharin.org मार्फत संसार भर के साथ प्रसारण भैर साझ 46 बजे को खबर में मेक को नमस्कार खबर को शुरू में मुख्य खबर पीरियड में रहकर सरकार प्रश्न थुपारियों सांसद श्रेष्ठ को भनाई सदले गांवपालिक पुनः खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना प्रमाणीकरण घोषणा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राजपा धादिंग जिला अधिवेशन जे 23 गति हुए शेयर बजार 13 अंक घट्यो राष्ट्रमंत्री खनाल को भारत भ्रमण भोलिदेखि कार्यतालिका सार्वजनिक अब पूरा खबर धादिंग क्षेत्र नंबर 2 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं संसदीय सुनवाई समिति का अध्यक्ष बुधनारायण श्रेष्ठ ने हनीमून पीरियड में रहकर सरकार प्रश्न प्रश्न थुपारिएको बताउनु भएको छ। पत्रकार महासंघ धादिंग 24 औं साधारण सभा संबोधन करते

0: कैलाकुंठ नगरपालिका तीन शांत बजार धादिंग बेसी होटल जनजीविका अगाड़ी।
1: फोन नंबर 010-521-248 मोबाइल नंबर 98-141-1494-84।
2: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज।